0: Well, peace, New York. It's Link the God King, man. When I'm not in the studio writing my next Hot 16, I'm definitely listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas.
3: Low battery.
1: Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y The Ad Council.
4: Interested in radio broadcasting? Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at your college radio station. Moreover, bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports and entertainment, visual arts and web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or one day have a promising career in the media communications industry, volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to gain real work experience to your resume. For more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G. Again, for more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G.
5: धोखाधड़ी चेतावनी अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF ए कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या MAF ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दे। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
6: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.